जाऊ बिहारी, खली जाऊ बिहारी, या कमर दोरे मुदवल मशारी, अलवा फिर दुराओ अल मंसूर रसूल मामून।